सलाहकार मछुआ पामियो हतो फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड थया बाद नियम मुजब विमान मा क्रू मेंबर्स नु मेडिकल परीक्षण करता एक पायलट गांजाना नशामा हतो जारे आगरना बनी त्यारे विमान मा 137 मुसाफरो हता शुरुआत मा एवू जणावामा आव्यु हतु विमान हवामान के टर्ब्युलेंस मा फसायु हतु पण एक्चुअली पायलट नी भूल थई हती के थई गई है तो नशा मा कहीं पण थई सके ने भारतीय वायुसेना 70 दिवस सुधी लांबो युद्धाभ्यास करवा जई रही छे भारतना आ निर्णय थी पाकिस्तान मा खड़बड़ाहट मची गयो छे वायुसेना सप्टेम्बर 21 थी 7 ऑक्टोबर सुधी जैसलमेर थी जोधपुर सेक्टर मा युद्धाभ्यास करशे पाकिस्ताने इमरजेंसी बैठक बोलावी छे अने बॉर्डर पर देखरेख पण वधारी दीधी छे भारतीय वायुसेनाए आ युद्धाभ्यासनो उद्देश्य पोतानी ऑपरेशनल प्रक्रियाओ बेहतर तालमेल तैनातीनी पद्धतिओ सैन्यकर्मीओ अने विमानोनी सज्जतानी चकासणी करवानो जणाव्यु छे अने एक स्टोरी छे नानी सरखी मानी ममताएनी अनोखी जीत दीकरीओने भणतर माटे उंघाड़ा पगे दौड़ीने मैरेथॉन जीतनार रमाबाई रणवीरनुं बीड एटले के महाराष्ट्रना बीड जिल्लामां सन्मान करवामां आव्युं हतुं ए तेमने 50,000 रुपया आपवामां आव्या हता आ जे माता हता ए ज्यारे दौड़ी रह्या हता तेमना पगमां चंपल हती शूज नहोता एटले ज्यारे चंपलमां पगो यू कान रन अने पग खसवा लाग्या त्यारे चंपल हाथमां पकड़ी अने साड़ीमां दौड़ीने रीस जीती हती પોતાની દીકરીઓ માટે અને વુમન એશિયા કપ 2026 ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 5 સપ્ટેમ્બરમાં રોજ રમાયેલી T20 મેચ ભારત માત્ર 52 બોલમાં જીત્યું છે પાકિસ્તાન ટોસ જીતીને બેટિંગ લઈ ફક્ત 55 રન બનાવ્યું હતું ભારત તરફથી શ્રી શરણી અને પ્રેમા રાવતે 3-3 વિકેટો લીધી હતી છેલ્લે સોના ચાંદીના ભાવમાં 22 કેરેટનું સોનું 10 ગ્રામ દીઠ રૂપિયા 1,39,340 ચાંદી 1 કિલો દીઠ રૂપિયા 2,32,119 ન્યૂઝીલેન્ડ ડોલરનો ભાવ લગભગ 54 રૂપિયા અને 43 પૈસાનો છે આ હતા આપને માટે આજના સમાચારો નમસ્કાર

इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, बोसा लेके एक किस, गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तूने फिर से पूछा, क्या बाबा? मैं बोला, तितली बेटा। तितली तितली कहते कहते सुनते एक महीना पूरा गुर्जा, पूरा गुर्जा गुजरा। एक महीना पूछ के बेटा तितली कहना तूने सीखा, हर एक नाम जो तूने सीखा कितनी बार पूछा तूने। तेरे भी दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है, बातें करते करते तू तो मेरी गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना, बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते, पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना।